0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा,

0: आकाशवाणी FM बठिंडा ते इस वक्त तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: ते आओ हुण सर्वन करदे आं भाई दविंदर सिंह सोढी उन्हां दे रागी जत्थे पासों गायन कीता ए शब्द।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती

0: है जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए

0: करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगनम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स

0: खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमरीका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ओर्मूज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish e Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While countries like Germany and China usually run 2 or 3 coach hydrogen trains, India has developed a 10 coach formation. It is designed to carry nearly 2,600 passengers, which is the highest

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच करीब 25,000 करोड़ रुपए दे वख वख प्रोजेक्ट राष्ट्र नूं समर्पित करनगे ते उनां दे नींह पत्थर रखणगे। प्रधानमंत्री हरियाणा दे जींद रेलवे स्टेशन ते जींद ते सोनीपत विचकार चलण वाली पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगड्डी नूं भी हरी झंडी दिखाउणगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 दी मुड़ परीक्षा दे नतीजे ऐलाने। 11 लाख तों वध उम्मीदवारां ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष ते सहायक प्रोग्रामां विच दाखले लई योग्यता प्राप्त की थी। गुजरात दहशतगर्दी विरोधी दस्ते ने पाकिस्तान आधारित जैश ए मोहम्मद धड़े ते दहशतगर्द मॉड्यूल दी जांच दे संबंध विच 5 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार कीता है। मर्दां दे क्रिकेट विच मेजबान इंग्लैंड ने कल रात 3 मैचां दी लड़ी ते दूजे एक दिन अंतरराष्ट्री मैच विच भारत नूं 4 विकटां नाल हरा के लड़ी 1-1 नाल बराबर कर ली। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच कई प्रोजेक्ट राष्ट्र नूं समर्पित करनगे अते नवे प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखणगे। ओह दोपहर नूं पंजाब ते जलंधर पहुंचणगे जिथे ओह 5,470 करोड़ रुपए तों वध दे रेल अते सड़की बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करनगे ते नींह पत्थर रखणगे। इन्हां प्रोजेक्टां दा उद्देश संपर्क नूं मजबूत करना, मुसाफरां दी सहूलत विच सुधार करना ते खेतर विच आर्थिक विकास नूं तेज करना है। उन्हां दी यात्रा दे मद्देनजर सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध कीते गए ने। पेश है साडे पत्रकार दी इक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री जलंधर छावनी स्टेशन का निजी तौर से उद्घाटन करने तो बाद जलंधर तो वर्चुअली 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिन्हां विच एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन्हां स्टेशनों को दुनिया के सब तो वड्डे स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम विचों एक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदलिया गया है। प्रधानमंत्री जलंधर छावनी रेलवे स्टेशन तो संत रविदास एक्सप्रेस नूं भी हरी झंडी विखाउणगे। ये भारत के दो सब तो सत्कारत धार्मिक अते सभ्याचारक केंद्र अमृतसर अते वाराणसी नूं जोड़न वाली पहली

ਕੱਲੇ ਲਾਡੋ ਬਾਂਹ ਲੋ ਨੀਂਦੋ ਕੱਲੇ ਚੌਕੀ ਚੱਲ ਰਸੋ ਨਾ ਮੋਰ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜਾ ਖਾ।

कृष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाजों में। नासिर फराज ने इसे लिखा था और राजेश रोशन का संगीत था। बंटी और बबली फिल्म का गीत आपको अब सुनवा रहे हैं सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें। गुलजार के बोल हैं शंकर एहसान लॉय की तर्ज।

दुखी तुम कहो तो चले, ये जुनून है।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में बंटी और बबली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

सुने थे चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजों में। फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। समीर ने इसे लिखा था, हिमेश रेशमिया ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

श्रोताओ नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थी बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

आनंद देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आईं, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की।

कानन देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं, जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती।

तकरीबन 4 दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता के मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रहीं, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

0: मतवाले मैं चाल चलूं मतवाले डरा डरा डरा डरा डरा डरा डरा
1: डरा डरा डरा डरा डरा डरा डरा मोरे आंगना में आए आली आली मैं चाल चलूं मतवाले झूम रही है आली अम्मा की डाली झूम रही है आली अम्मा की डाली।
2: यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से

सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत कायल हो रहे हैं लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

0: इतने छोटी सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रही जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमिनोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थी।
1: तुम बिना कल ना आवे मोहे, तुम बिना कल ना

आनंद देवी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रहीं। उनकी कुछ ऐसी ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्या। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ।

किरण देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थीं। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्ला रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

कानन देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला, और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

आनंद देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ, तो उन्होंने उस ओर कोई न कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

कानन देवी के प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

सानन देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रहीं। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: प्रोग्राम दिवाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा, ता फिर सुनना ना पुलना, मिति 17 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 बजे प्रोग्राम पिंडा आले।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करण विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
3: ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1-4-5-5-5 ते कॉल करो।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
3: प्रोग्राम चल रहा है गीत पिटारा, जिस दे तहत तुसी आनंद मान रहे हो सदाबहार पंजाबी गीतां दा, ते मैं तुहाडे नाल तुहाडा रेडियो दोस्त सुखमान। स्टूडियो दी घड़ी ते समां 10:32:23 हो रहे ने। आओ हुण सुणदे हाँ प्रोग्राम दा अगला गीत, जिस नूं आवाज़ दित्ती है मनमोहन वारस ने, गीतकार ने अमर सिंह शौंकी ते संगीतकार ने कमल हीर ते संगतार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 14555 ते कॉल करो।
1: आकाशवाणी FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 18 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਰਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਭਿਆਸ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी एक सूचना, आज दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम घर परिवार के तहत सिलसिला होवेगा हड बीतियां जाग बीतियां। प्रोग्राम तहत कहानी पेश करेंगे दीपा छाबड़ा, सो सुनना ना भूलना आज दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम घर परिवार के तहत सिलसिला हड बीतियां जाग बीतियां।
3: सुनते हाँ जी प्रोग्राम का अगला गीत, जिसनों आवाज़ दिती है सदूर सिकंदर ने, कलबद किया है दविंदर खन्नेवाला, ते म्यूजिक दिता है चरणजीत हूजा ने।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देश से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये उपलब्धि नवाचार, हरित परिवहन और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक के स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके क्रियान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 695 अंक बढ़कर 77,882 जबकि निफ्टी 178 अंक की बढ़त के साथ 24,251 पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों पर व्यापक कार्रवाई की योजना की घोषणा की है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका की सड़कों पर अवैध रूप से काम कर रहे लोगों को हटाकर उनकी जगह नए वाणिज्यिक लाइसेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य क्षेत्र के लोगों को लाना है। ये घोषणा पेंसिल्वेनिया रक्षा तथा नवाचार शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कॉकटेल टू से आपने गाना सुना लहर। ये आजकल मेरी फेवरेट टॉप 10 लिस्ट के अंदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट सॉन्ग है, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं गाना सुनता हूँ तो बस मैं सुनता ही चला जाता हूँ। अभी स्टूडियो की तरफ आते हुए भी रास्ते भर मैं ये गाना सेम गाना लूप पर चलाते हुए सुनता हुआ आ रहा था, और बहुत कुछ जज्बात मन में उठते हैं जब आप देखते हैं लहर और समंदर किनारा, बीच किनारा। आप जानते हैं, इफ यू रियली लाइक यू नो सी शोर, तो आप ये कह सकते हैं कि शी सेल्स शेल्स ऑन द शोर ऑफ द सी शेल्स, ऐसा कुछ है ना। तो ये टंग ट्विस्टर करते रहिए, आपकी जुबान साफ होती रहेगी। अब देखिए, दिल साफ होना हो, जुबान साफ होनी चाहिए, क्योंकि जमाने की ये बहुत बड़ी आजकल रिक्वायरमेंट है। और बॉलीवुड के अंदर तो लोग देखिए मुखौटे लगाने के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और जो वो होते हैं वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो कहते हैं वो उन्हें कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो कह जाते हैं वो हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग उनके फैंस हैं। और आज बहुत समय के बाद न्यूज में जो आए हैं वो हैं विवेक ओबराय, एंड ये नहीं बताने आ रहे कि आप किस तरह से एक्टिंग करें, तो ही इज अ गुड एक्टर, आई नो। उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और फिर धीरे धीरे एज अ डांसर, एंड फिर वो फिल्मों में डायरेक्शन में भी उन्होंने हाथ आजमाया एज अ यू नो एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह। एंड देन प्रॉबेबली उनकी जो बिगेस्ट हिट है वो है साथिया, और अब वो एक नई न्यूज लेके आए हैं, लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइस। देखिए ये फाइनेंशियल

0: मैं नहीं कहता कि आप उनकी बात माने, बट वो ये कहते हैं कि हर किसी को पैसे के लेन देन को लेकर सतर्क होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि जीवन में पैसे का क्या मूल्य है।
1: साथिया, साथिया,
0: तो अगर भी पैसे को लेकर आप थोड़े से नादान हैं तो यू नो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स सोनू निगम की आवाज में, अपने समय का ब्लॉकबस्टर गाना साथिया।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड रील्स आकाशवाणी रेनबो पर, और आपने 102.6 MHz पर दिल्ली और आसपास, इसके अलावा ढेरों फ्रीक्वेंसीज पर पूरे भारतवर्ष में आप हमें सुन सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, बेफिक्र रहिए, हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा। अरे, इस बात से मुझे याद आया कि आपको बॉलीवुड सरताज के लिए भी तो सवाल बताना है, क्योंकि आप बड़े उत्सुक रहते हैं। तो हमारा आज का सवाल है करीना कपूर को लेकर, कि उनकी वैसे तो बहुत सारी फिल्में आई हैं, बट अचानक मेरा मन किया क्यों नहीं उनकी एक कुछ समय पहले आई फिल्म कमबख्त इश्क मूवी से आपको ये जानना है कि करीना कपूर ने उसके अंदर जो रोल अदा किया था, उस कैरेक्टर का नाम क्या, बस इतना सा है। लिख के भेज दीजिए 9868107070 पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है अपने नाम के साथ, और हो सकता है आप आज बन जाएं बॉलीवुड सरताज।

बहुत दिनों से कुछ खास बड़ा प्रोजेक्ट दिखे उसका इंतजार है फैंस को, लेकिन अनुष्का और विराट कोहली हम दोनों हमेशा न्यूज में बने रहते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, बॉलीवुड का आसमान हो, या फिर लंदन का कोई बढ़िया सा मैदान हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनुष्का शर्मा अभी हाल ही में लंदन में थी, और जहाँ वो मिली किसी स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल गुरु से जिनका नाम है कृष्णदास। तो देखिए, इसके लिए स्पेशली लंदन गई हैं, अच्छी बात है। और वैसे हमने उन्हें पहले भी देखा है कि वृंदावन की गलियों से होते हुए अब लंदन तक का ये सफर। तो अनुष्का नॉर्मली विराट और अनुष्का रहते हैं खबरों में अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालते हुए स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हुए। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर।

शाहरुख खान के फैंस के लिए बहुत से ऐसे सपने होते हैं। उनमें से एक सपना है जो उनकी मन्नत है, वो ये है कि वो शाहरुख खान के घर मन्नत के सामने खड़े हों और उन्हें वो आइकॉनिक पोज बनाते हुए देखें। लेकिन अभी इसमें थोड़ा व्यवधान है, बिकॉज उनका जो घर है रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन के अंडर है। और ये क्यों न्यूज में है ये भी बताऊंगा, पहले गाना तो सुन लीजिए। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ रंजन। हम आप तक पहुंच रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से।

जी विलेत को क्यों जाएंगे, बहुत से लोग हैं जो देश विदेश से शाहरुख खान साहब के ढेर सारे फैंस हैं, जो स्पेशल मौकों पर, स्पेशली ईद हो या शाहरुख बर्थडे हो, घर के बाहर, तब तो बाकायदा इट्स ऐसी भीड़ वहां पे होती है कि लाठी चार्ज भी कई बार हो जाता है। सॉरी, आई फील सॉरी फॉर द फैंस, बट ये रियलिटी है। बट हाँ, वो नॉर्मली एक वन ऑफ द लैंडमार्क है। अगर आप मुंबई जाते हैं एज अ टूरिस्ट, घूमने जाते हैं देश से या विदेश से, तो एक ये आइकॉनिक जगह है। लोग मन्नत के बाहर खड़े होके अपनी सेल्फी लेना, फोटोज खिंचवाना कि हमने शाहरुख के घर का रास्ता तय किया है, हम खड़े हुए हैं दीवानों की तरह और वेट किया है उस आइकॉनिक पोज के लिए। अब मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका जब घर बन रहा है तो किसी ने पीएल फाइल की, क्योंकि ऐसा कानून होता है कि समंदर किनारे या कुछ और ऐसे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स जिनके घरों के आसपास होते हैं, दिल्ली में ऐसी बहुत सी कॉलोनी है जिन्हें आप बहुत ऊंचाई तक अपने घर की लंबाई नहीं ले जा सकते, इट इज अंडर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसा ही किसी ने पीएल दाखिल की थी, जहां माननीय कोर्ट ने शाहरुख को बाकायदा एक इजाजत दे दी है कि वो 6 माले तक तो अपना घर बना सकते हैं। वो घर बन रहा है, हमें इस सब से कोई मतलब नहीं है। हम फैन लोग क्या चाहते हैं कि जब नया घर बने तो ये आइकॉनिक पोज के लिए, जैसा स्ट्रक्चर आपने पहले ही वो लोहे का जंगला सा लगा रखा है ना, इससे बेहतर कुछ बनाइएगा ताकि हम फैंस को आपके दर्शन होते रहें, होते रहें, होते रहें। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन, आकाशवाणी रेनबो पर।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल है।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ रंजन, और हमारे साथ आप यूं ही बने रहें क्योंकि आपको यहां पर मौका मिलता है बॉलीवुड सरताज बनने का। उसके लिए छोटा सा हमारा सवाल है, जिसे आपने सही आंसर देने पर आपका मौका लग सकता है, आपका चांस लग सकता है। और हमारा सवाल आज का है कि कमबख्त इश्क, जो एक मूवी आई थी आई थिंक 2009 के आसपास कभी आई होगी, सो उस मूवी में करीना कपूर का जो नाम था, जिस कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया, वो कैरेक्टर का क्या नाम था, बता के हमें झटपट लिख के भेजिए आकाशवाणी रेनबो के व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070, और आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज।

0: सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं अभिषेक रंजन और आज है 17 जुलाई 2026 और हम आज मना रहे हैं रवि किशन साहब का जन्मदिन। 17 जुलाई 1969 को वो जन्मे थे और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। स्पेशली प्राइमरली ही स्टार्टेड ऑफ विद भोजपुरी और वहां पर वो उन्होंने बाकायदा सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त किया। उसके बाद हिंदी फिल्मों में भी काम करते रहे। उनकी कुछ एक परफॉर्मेंस हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर हेरा फेरी में बड़ा कॉमिक रोल किया। उसके अलावा उनकी मूवी रावण में उनका रोल था, एजेंट विनोद में, बुलेट राजा में भी, आई थिंक आई सीन दिस मूवी एज वेल, और ऐसी बहुत सी अनगिनत मूवी हैं। बिग बॉस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आजकल वो जाने माने राजनीतिज्ञ हैं, इज अ पॉलिटिशियन एज वेल। सो रवि किशन साहब, आपको आज जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आकाशवाणी की तरफ से।
1: तुम्हें एक दिन वहां दिया फिर कुड़ी।

0: लिखने की बात है भाई, जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं वो ये भूल ही गए हैं कि बॉम्बे इज नो मोर बॉम्बे, इट्स मुंबई. तो यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं. आप सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स, और सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे सरताज का, और बहुत जल्द किसी एक को बनाएंगे बॉलीवुड सरताज. कहीं मत जाइएगा, आप जुड़े रहें हमारे साथ.
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू. सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी. ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए.
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही बहती ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ रंजन। और अब आपको थोड़ी खबर बता दें कि हमारी जो फ्राइडे को फिल्में रिलीज होती हैं वो बॉक्स ऑफिस पर जो कमाल या धमाल करती हैं उसकी क्या रिपोर्ट है। और चांस की बात है हम बात करने जा रहे हैं धमाल मूवी की। धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7 दिन का हम बताएं तो लगभग 101 करोड़ के आसपास ये पहुंचा है। मुझे कई बार लगता है, मैं वैसे ही एक कैलकुलेशन लगा के देख रहा था इस मूवी के, कुछ डे वाइज अगर मैं आपको ब्रेक डाउन दूं कि भाई कौन से दिन कितना इन्होंने बिजनेस किया है, तो लगभग सोचिए फ्राइडे को 14 करोड़ का आई थिंक ओपनिंग लगी। सैटरडे को ये बिजनेस 22 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गया। फिर संडे को बिल्कुल 28 करोड़ बंपर है ना, और उसके मंडे को डिप हो गया बिकॉज लोग काम पे भी तो जाएंगे ना, 8 करोड़। अब ये फिगर्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए बड़ी सोचने वाली बात है। मुझे कई बार लगता है फिल्में वैसे ही लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा होता है इनको बनाने में।

की फीस ही आजकल कई 100 करोड़ में पहुंच जाती है, कई 100 तो नहीं, मतलब 30 40 50 सेंट, प्रॉफिट शेयरिंग एंड स्टफ लाइक दैट। 4,000 स्क्रीन्स पर अगर कोई मूवी दिखाई जाए और पहले दिन वो 14 करोड़ की ओपनिंग ले, तो कितना बड़ा लगता है ना सुनने में, लेकिन अगर इसकी एक एवरेज निकाली जाए एज अ लेमैन, तो 35,000 रुपए की एक स्क्रीन से आपकी सेल है, रेवेन्यू है। दैट्स नथिंग, इससे ज्यादा सेल तो मुझे लगता है पॉपकॉर्न और सॉफ्ट ड्रिंक्स की हो जाती है। इसीलिए जब भी सिनेमा घर में अगर बिजनेस की सोचें, तो सिनेमा घर में सिनेमा की तरफ मत जाएं, पॉपकॉर्न काउंटर की तरफ जाएं। मतलब ये छोटा सा ज्ञान है, लेना चाहें तो लें, नहीं तो हवा में उड़ाएं।

करीना कपूर की ही मूवी से ये गाना आपने सुना बेबो, और ये मूवी रही कम्बख्त इश्क। और हमारा आज बॉलीवुड का सरताज बनाने के लिए जो सवाल था वो भी यही था कि कम्बख्त इश्क में जो कैरेक्टर प्ले किया बेबो ने, यानी करीना कपूर ने, बेबो आई थिंक इनका रियल लाइफ में जो पेट नेम है वो बेबो है, वैसे हम उन्हें करीना कपूर के नाम से जानते हैं। और कम्बख्त इश्क में इनका जो नाम था वो, मैं राइट आंसर अब आपको बता देता हूँ, उसका मैं रीजन देता हूँ। आज हम जिन्हें बॉलीवुड सरताज बनाने जा रहे हैं वो हैं मिसेज धर्म भाटिया रोहतक से।

और इन्होंने भी लिखा है सही जवाब, सिमरता राय नाम रहा आपका, बेबो या करीना कपूर ने जो प्ले किया था। बहुत सारे हमारे पास सही आंसर आए। वैसे इट्स अ सॉर्ट ऑफ यू नो टंग ट्विस्टर नेम, सिमरता राय। अब सब लोग सही से नहीं, मैं भी मुझे लगता है बोल पा रहा हूँ कि नहीं है, ये तो आप ही बताएंगे। खैर कुछ एक नाम और ले लेता हूँ। तो सबसे पहले धर्म भाटिया जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा दिन आप कुछ मीठा बनाइएगा, खाइएगा, मुंह मीठा कीजिएगा। आज के दिन आप हैं बॉलीवुड सरताज। और बहुत से लोगों ने सही आंसर्स दिए, अब सबके नाम तो नहीं यहां ले सकते, तो आप बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यूं ही ट्राई करते रहें, आकाशवाणी के रेनबो के संग जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगा 1 बजे के बाद, और मेरे जाने के बाद यहां पर आएंगी लिपिका दास विद द प्रोग्राम प्ले इट कूल। जुड़े रहें आकाशवाणी के संग, सुनते रहें, क्योंकि हम हैं आपके साथ 90 वर्षों से 2400 घंटे, दिल से दिल तक।

बस इस कार्यक्रम में इतना ही समय था मेरे लिए, तो रंजन को दीजिए इजाजत, आपसे पुनः होगी भेंट जैसा मैंने पहले कहा। और कार्यक्रम रहेगा 1:20 से, जिसमें आप ढेर सारे अपने मैसेजेस भेज पाएंगे, अपने दिल की बात कह पाएंगे, क्योंकि आज है महीने का तीसरा फ्राइडे, तो प्रोग्राम होगा बिंदास बोल। जुड़ रही आकाशवाणी के संग, टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ दो या तीन डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एक क्लब स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से

महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रोग्राम दिवाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा, ता फिर सुनना ना पुलना, मिति 17 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 बजे प्रोग्राम पिंडा आले।

श्रोतियो आकाशवाणी FM बठिंडा वालों प्रसारित किए जाते प्रोग्राम बारे तुसी भी अपनी राय रख सकते हो और दे सकते हो अपने नेक सुझाव प्रोग्राम श्रोता मंच दे विच। प्रोग्राम विच तुसी सानू खत लिख सकते हो साडे पते इंचार्ज प्रोग्राम श्रोता मंच मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी बठिंडा ते। नाल ही चलदे प्रोग्राम विच तुसी फोन कर सकते हो स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते। प्रोग्राम श्रोता मंच तुसी सुनदे हो हर हफ्ते दिन शुक्रवार शाम 5:30 बजे।

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी एक सूचना। श्रोतियो, वोटर सूची दी मैपिंग नू लेके चल रही SIR यानी कि विशेष गहन सुधाई संबंधी पूरी जानकारी तुसी सुनोगे आज शाम ठीक 5:30 बजे प्रोग्राम श्रोता मंच दे तहत। जानकारी देंगे जिला चोन अफसर अते डिप्टी कमिश्नर श्री राजेश तिमान, मुलाकाती अते प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सो सुनना जरूर SIR संबंधी विशेष जानकारी आज शाम ठीक 5:30 बजे। Thank you.

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी एक सूचना। श्रोतियों, वोटर सूची दी मैपिंग नू लेके चल रही SIR यानी कि विशेष गहन सुधाई संबंधी पूरी जानकारी तुसी सुनोगे आज शाम ठीक 5:30 बजे प्रोग्राम श्रोता मंच दे तहत। जानकारी देंगे जिला चोन अफसर अते डिप्टी कमिश्नर श्री राजेश तिमान, मुलाकाती अते प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सो सुनना जरूर SIR संबंधी विशेष जानकारी आज शाम ठीक 5:30 बजे।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे श्रोतियों, तुहाड़ी जानकारी लई दस दईए दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम घर परिवार दे दौरान तुसी सुनोगे कहानीकार अजमेर सिंह औलख दी कहानी हम कित काज जगत में आए। ते कहानी तुहाड़े लई लेके आ रही हां मैं यानी कि दीपा छाबड़ा। सो सुनना जरूर दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम घर परिवार दे दौरान सिलसिला हड बीतियां जग बीतियां।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1-4-5-5-5 ते कॉल करो।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
3: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मैं दीपा छाबड़ा हाजिर हाँ तुहाडे लई प्रोग्राम हड बीतियां जग बीतियां लैके। मेरे वालों सारे ही श्रोतियां नूं प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करदी हां दोस्तों तुसी सारे बिलकुल ठीक ठाक ते तंदरुस्त होंगे। दोस्तों कहानियां दा साडे नाल इक गूढ़ा नाता है। छोटे हुंदे दादियां नानियां सानूं कहानियां सुनांदियां सी ते अज आकाशवाणी FM बठिंडा तुहाडे लई हड बीतियां जग बीतियां दे तहत कहानियां लेके आंदा है, जिस दे नाल तुहाडा मनोरंजन भी हुंदा ते नाल ही नाल तुहानूं कुछ ना कुछ सिखण नूं भी मिलदा है। ते अज दी कहानी लेके आई है तुहाडे लई दीपा छाबड़ा, ते जल्दी नाल तुहाडे नाल सांझा कर लैणी है कहानी दा नां की है। कहानी दा नां है हम कित काज जगत में आए। कहानी दे लेखक ने अजमेर सिंह औलख। बड़ी ही प्यारी कहानी मैनू लगी है ते उम्मीद करदी हां दोस्तों तुहानू भी ये कहानी बहुत ही प्यारी लगेगी। ते आओ करदे हां कहानी दी शुरुआत।

प्रोग्राम हैलो फरमाइश सुनने वाले तमाम श्रोतियां नूं सीमा मेहरा वल्लों एक बार फिर तो प्यार भरी नमस्कार। श्रोतिया अज्ज दे प्रोग्राम दे विच तुसीं डायल करना है साडे स्टूडियो दा नंबर 0164-2240-331 ते जुड़ जाना है आकाशवाणी FM बठिंडा दे नाल ते सुन लेना अपनी पसंद दा हिंदी फिल्मी गीत सिलसिला जी टेलीफोन मिलाओ जी।

0: प्रोग्राम दिवाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा, ता फिर सुनना ना पुलना, मिति 17 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 बजे प्रोग्राम पिंडा आले।
1: जिस रोते हो 1:38 का समा हो चुका है ते बिल्कुल जी प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी ते अगले श्रोता नाल गल करते हैं। हैलो
2: सीमा मेरा मैडम जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, नाम दस दे अपना।
2: मैडम जी मैं सुखदेव कुमार प्रजापति अबोर तो बोल रहे हैं जी।
1: जी स्वागत है प्रोग्राम दे विच तुहाडा।
2: धन्यवाद मैडम जी।
1: जी सुखदेव जी दसो जी अपनी फरमाइश।
2: मैडम जी फिल्म है जी गौतम गोविंदा उस गाना है जी एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसीब।
1: ठीक है जी
2: जी
1: ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
2: ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
1: ਜੀ
0: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 18 जुलाई दिन शनिवार शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोंगे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत सिलसिला अरदास दर्शन रूप अभ्यास।

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी एक सूचना। श्रोतियों, वोटर सूची दी मैपिंग नू लेके चल रही SIR यानी कि विशेष गहन सुधाई संबंधी पूरी जानकारी

ये लंबा सा कद ये लचकदार बाहें ये तपता बदन ये पिघलती निगाहें कुछ सुनाऊं।

0: मर गए।
1: यशोला मेरे सामने से हटा लो,
2: यशोला मेरे सामने से हटा लो,
1: हटा लो, बचा लो, बचा लो, हटा

0: कारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग

0: की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम

0: माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
1: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित जीएसपी ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय

0: बद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 1.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ NCERT ਦਾ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੰਗ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ 1330 ਸੁਣੋਗੇ।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए।

0: और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
0: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
0: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
1: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
0: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्बा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
1: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
0: श्रोताओं हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
1: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
0: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
1: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
0: जी,
1: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
0: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
0: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तप भूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है।

0: हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
1: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
0: कैसे बना हिमालय।
1: आज रिद्धि,
0: नव्या
1: और रिदित
0: सब बहुत खुश है
1: क्योंकि उनका परिवार
0: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
2: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा। मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
3: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
2: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
3: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे।
2: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे, जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
3: बहुत मजा आएगा।
1: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
0: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
1: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
0: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
1: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
0: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
1: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
1: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टेथिस महासागर। क्या नाम था?
2: टेथिस महासागर।
1: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
1: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड

0: यानी भारतीय हिस्सा टैथित सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
1: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथित सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय

प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर

0: दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
1: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
0: स्वामीनाथन बोला।
2: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
0: दादी ने पूछा।
1: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
2: अच्छा,
0: दादी काफी प्रभावित हुई।
2: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
0: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
1: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
1: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
2: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
0: दादी ने पूछा।
1: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
2: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
2: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
2: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
2: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
0: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
2: अच्छा,
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
0: उसने कहा।

0: पानी खत्म होने पर पूछा।
1: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
2: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
1: दो शेर राजम पर झपटे थे,
0: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
2: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
1: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
0: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
2: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
1: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
0: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
2: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
1: अच्छा।
0: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
1: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में।
0: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गईं।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगमंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: हुणे तुसी सुन रहे सी NCERT दा स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। इस दी तुसी भाग 1330 सुन रहे सी। साडे स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक 3 बज चुके ने ते हुण रिले कर रहे हां विविध भारती मुंबई दे प्रसारण, जिस दे तहत 3 बजे तुसी सुणोगे प्रोग्राम सखी सहेली। 4 बजे दा समां रहेगा प्रोग्राम गीतो भरी कहानी का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ। जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजोकर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं मनीतू बोल रही हूँ, जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, जोधपुर से बोल रही हैं, यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
1: मैम जोधपुर का तो मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है
0: मिर्ची बड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है
1: और
0: वहाँ।
1: मैडम बारिश के मौसम में आप खाओगे ना, जब वहाँ पे खड़े-खड़े, तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खा लूं। हमारे
0: ये
1: यहाँ की
0: तो
1: मिर्ची
0: होता है,
1: बड़ा
0: ये तो होता है।
1: फेमस
0: तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम। आप आइए मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे चित्तर
0: अच्छा
1: पैलेस देखिए, उम्मेद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मीद भवन, बहुत सुना है उसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियां ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की,
1: जी
0: तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ
0: हाँ,
1: है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम लेऊं
0: हाँ
1: मैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए।
1: एक बड़ी वाली है हर्षिता और छोटी वाली है पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता
0: वाह,
1: का आज 7th मंथ का बर्थडे है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ छोटी सी पुलकिता को, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, हर्षिता का भी और पुलकिता का भी, बहुत
1: दादा ने
0: प्यारा।
1: नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था
0: हाँ जी,
1: तब सेकेंड हुई है, तो
0: अच्छा
1: बोले
0: अच्छा
1: पुल की तरह रखेंगे इसका।
0: वही, मतलब वही है, हर्ष उत्तरा पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं घर का काम करती हूँ
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो
1: मैं
0: डांस भी हो
1: हॉस्पिटल में
0: सकता है।
1: जॉब करती हूँ, सरकारी
0: अच्छा, आप जॉब करती हैं,
1: नौकर,
0: अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी में,
1: नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारे कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी बंद अलग अलग चीजें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या पसंद है?
1: मैम गाना तो मेरे को देखो इतना आता नहीं, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, वो साथ साथ वैसे गा लेते हैं, पर वो वाली सिंगिंग नहीं,
0: अच्छा
1: लेकिन डांस का है तो वो शौक होता है, कभी कभी कर लेते हैं घर पे।
0: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से
1: बिल्कुल
0: ये अच्छी चीज है, ये इस तरह की जो जो चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए, है
1: बिल्कुल,
0: ना?
1: थोड़ा
0: हम
1: माइंड
0: जो
1: फ्रेश करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहां पे, जो जॉब की परेशानियां होती हैं, वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना?
1: बिल्कुल मैडम जी।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं केकाचा शेख बोल रही हूँ, गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं जी।
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप। तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है। पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहां पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहां आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं,
0: अरे
1: ड्रेस
0: वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहां के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज्यादा, है ना।
1: वहां के कपड़े बहुत मशहूर है, सब
0: अच्छा,
1: दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत
1: उन्हों
0: अच्छी
1: की,
0: बात है।
1: फिर नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुंचा देगा।
0: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा।
1: मैडम, मैं तो खाने में बिरयानी है, ऐसी चीजें खा लेती हूँ, बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा, खिचड़ा।

0: बारे में बहुत बोलता है।
1: अच्छा, तो चलिए और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
0: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है, मेरी
1: अरे वाह, तो सब लोग साथ में
0: जो
1: रहते
0: शादी
1: हैं?
0: जी मेरी ऐसे शादी नहीं है, मेरी
1: हाँ
0: दीदी की हो गई है।
1: अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है?
0: हेलो सैरी में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का, तेरी
1: अच्छा, आपको बॉडी गार्ड का गाना सुनना?
0: कहानी है मुश्किल।
1: अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से।

0: बोल रही हैं, ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे बेटी का नाम भी आरती ही है और वो
0: अच्छा।
1: आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: और मैं बहुत अच्छा लगता है,
0: जी।
1: 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया, बहुत मजा आता है उसको, इसके
0: अच्छा
1: लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मन बुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती और थोड़ी
0: अच्छा।
1: मन बुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी अभी इसकी बर्थडे हुई गई
0: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत
1: 10 तारीख।
0: ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और
1: हाँ
0: बताइए, अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या रहती है?
1: मैडम, उसको तो क्या है कि नख जो है ना वो रंगोना शायद भी उखड़ जाए ना तो नख पॉलिश रंगवा लेती, चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है
0: अच्छा, तो अच्छा
1: और
0: लगता है
1: पाँव में
0: उसे,
1: छड़
0: तैयार होना अच्छा
1: पायल।
0: लगता है।
1: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा 2 टाइम नहाना खाना, सब
0: अरे वाह,
1: जो
0: बहुत
1: मांगे वो देना,
0: बहुत अच्छी
1: उसकी ही
0: बात
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता
0: है।
1: है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। अपने अपने आप से प्यार करना है ना, अपने आप से प्यार
1: हाँ
0: करना
1: हाँ
0: सबसे पहले जरूरी होता है। और बहुत अच्छी चीज
1: हाँ
0: है, वो
1: क्या
0: सजती
1: क्या
0: है, संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है ये।
1: है कि मैम, मेरा एक लड़का है बड़ा और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है, और अभी अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका,
0: अच्छा,
1: आजवा रोड पे,
0: बहुत बहुत
1: उससे
0: आपको
1: छोटी
0: बधाइयाँ।
1: थी।
0: और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं, ये सब नहीं, उसको तो क्या है कि वो गाना रेडिया वो सब
0: अच्छा,
1: बहुत पहले से सुनती रहती है, और सलमान खान बहुत अच्छा लगता
0: हाँ
1: है तो तेरे
0: अच्छा,
1: नाम का गीत सुनती है, वो
0: अरे वाह,
1: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाती।
0: अच्छा, यानी उसे संगीत
1: हाँ
0: पसंद है। संगीत पता है आपको, एक बहुत अच्छी
1: वो,
0: थेरेपी भी है।
1: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाती।
0: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत, ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए।
1: हाँ,
0: अब बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
1: आरती को पसंद

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे
1: सकीना
0: वाह,
1: है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला
1: जी
0: कश्मीर से बोल रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बताइए अब
1: मैं
0: अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है, कश्मीर का पश्मीना एकदम नाम जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी, मैम
0: जी, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना?
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं? मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते हैं ना, हम घर का काम खत्म करके बस यही
0: हाँ
1: करते हैं।
0: नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा, आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई
1: जी
0: ऊनी
1: मैम, शाल
0: कपड़े?
1: बनाते हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहां तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा, पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब
1: जी जी मैम,
0: होता है?
1: बहुत कस्में होते हैं पश्मीना की। जी,
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: दो
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: कस्म के बनाते हैं।
0: अच्छा तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं और देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना?
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम।
0: बहुत जरूरी है, अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसका आप अपने, जिससे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद
1: जी
0: कर
1: जी
0: सकें।
1: मैम।
0: तो बहुत अच्छी चीज है आप जो कर रही हैं, घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी, मैं दिलवाले फिल्म है ना, उसका कोई भी गीत मैं सुनना चाहती
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना?
1: हूँ। जी जी मैम,
0: चलिए, आपसे बात
1: थैंक
0: करके बहुत अच्छा लगा हमें। तो सुनाते हैं आपको
1: यू
0: आपके
1: मैम।
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते। आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद खाटी से बोल रहे हैं।
0: हैं? तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहां पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है,
0: हाँ
1: रसगुल्ला भी है, यहाँ का मुर्शिदाबाद
0: हाँ
1: सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा।
1: फेमस है, यहाँ का आम भी फेमस है, फेमस
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क।
1: है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते हैं? आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ हाँ
1: उसी में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलते हैं
0: हाँ
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी हैं? आपको लिखने का शौक
1: हाँ,
0: है?
1: लिखती भी है। इस बार
0: अच्छा
1: भी हम भेजे,
0: अच्छा अच्छा
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगाए लगी हुई है,
0: हाँ अरे
1: और मेरा
0: वाह,
1: घर में बहुत सारी चीजें है, जो पेड़ ओड़ है फूल का, उसी में रात को रहते हैं। उन लोग को हम दाना देते हैं, तीन
0: बहुत अच्छी बात है।
1: टाइम उस सबको दाना देते हैं हम।
0: अच्छा, तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोयम लिखिए,
1: हाँ
0: कविताएं
1: हाँ
0: लिखिए,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाए, डगर डगर पर वृक्ष लगाए। जी
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालदाना का इंदौर से। जी
0: इंदौर से बोल रही हैं आप, हसीना मंसूरी। हाँ
1: जी
0: बहुत अच्छा लगा।
1: जी
0: बताइए कि आपको क्या पसंद है, मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी जहां तक मुझे लगता है।
1: जी बातें बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक है। रेडियो चलता रहता है दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुनते हैं, कभी मिस नहीं करते मैडम। और
0: अच्छा।
1: रेडियो मतलब खाना खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको
1: और
0: कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, तो अगर
0: हाँ
1: वो लेटर जैसा अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें,
0: हाँ
1: रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत
0: हाँ
1: शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, तो कभी
0: हाँ
1: ऐसा हो जाए
0: बिल्कुल
1: तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती है मैडम मैं अधिकतर, तो ज्यादातर तो, और घर में काम भी, छुट्टी रहती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है, साफ
0: ये तो बहुत जरूरी
1: सफाई
0: चीज
1: करना बहुत
0: है।
1: अच्छा लगता है। ये
0: हाँ तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: घनी पेक का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है,
0: अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
1: इसे मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम, रफो
0: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती हैं?
1: होता है। हाँ
0: अच्छा
1: इसे रफो होता है मैडम।
0: अच्छा तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
1: रेडियो
0: ये
1: सुनना
0: लिए
1: अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको, आवाज से लग रहा है मुझे
1: गाना
0: आपकी।
1: गाना अच्छा लगता है ना मैडम, गा के बताती हूँ।
0: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
1: जी, इनका
0: तो
1: नाम है फूल और अंगार, और मेरी फरमाइश भी यही है, और गाने के बोलने, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आंखें दूर फिर न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सही, हम बड़ागांव जिला गुना चंचल ढाकड़ बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको, मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनी सुनी सॉन्ग सुनना चाहते हैं सलमान खान का।
0: तो सुनवाती हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं ग्राम प्रति पोस्ट कर जिला चंदौली से इंद्रजी यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आप, आपको क्या करना पसंद है।
1: मुझे मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ मैम। रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है।
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सबकी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे
0: हाँ,
1: बहुत अच्छा लगता है। जी
0: आपको बहुत अच्छी बात है ये, आपको सखी सहेली अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे, क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय के।
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह की चीज पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से बहुत जो हमें कहीं से
0: हाँ,
1: खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है। जी
0: ये तो सही बात है। अगर संगीत जो होता है ना, वो एक दूसरे से बांध देता है ना, और
1: मैम,
0: साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही, लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल
1: जी
0: संगीत
1: मैम,
0: के प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं।
1: जी मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि हम अपने अंदर का भी जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, रिलैक्स हो जाते हैं ना
1: जी
0: एकदम, ऐसा लगता है ना।
1: जी अच्छा लगता है।
0: तो आपको जो गाना सुनना है ना, वो आप गा के सुना दीजिए। बता दीजिए हमें।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से।
0: हैं? अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: मैं घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट। तो
0: अरे वाह, बहुत अच्छी
1: मुझे
0: बात है।
1: हाँ, तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
0: कौन कौन से तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
1: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का हाँ, बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह, ये सब
0: अरे वाह,
1: चीजें।
0: क्या बात कर रहे हैं आप! इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी
1: जी,
0: चीजें खिलाती
1: कहते
0: होंगी।
1: हैं ना,

0: हाँ जी, कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना, घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह है, तो मैं
1: हाँ
0: पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ
1: अरे वाह,
0: और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
1: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए, और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए ताकि हम भी आए और आपने जो बताई है चीजें उनका हम भी कुछ लुत्फ उठा सके
0: अरे
1: क्योंकि बहुत
0: बिल्कुल।
1: अच्छी चीज है, आपको तरह तरह की चीजें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: जी मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
1: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आप के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 4002-4662 और STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो,

0: आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल न लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले, और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी बस थोड़ी ही देर के बाद।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
2: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पट्टी बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबन दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला। यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लोट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े।

प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई और फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे। चार पांच तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले, दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया। मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली। उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी।

विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और बिज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया। शादी के बाद बिज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी बिज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी मां और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। बिज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। बिज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो बिज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। बिज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे, टिमटिमाती चमक लिए बिज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।

0: हिम्मतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था। फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला, और उससे भी बड़ी बात, उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है।

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था

कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब विज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि विज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत ना मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हो तो ज्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी, और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे, और उसी जमीन को

बीच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की बिज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर किए कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये, विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए? और कहां से चला था रिश्ता, कहां पहुंच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा। सब

0: गाड़ी।
1: आज विजय बेघर है। दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर। शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से

अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो

गड़ा पर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया उठती रूठा यार मना मित्रा यार को यार बना मित्रा न खुद से रहो।

भाई हो तो ऐसा ये की तो भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुत कर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: नमस्कार श्रोतियो, प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत लैके हाजिर हाँ। मैं रमा शर्मा ते इस प्रोग्राम दे तहत अज तुसी सुनोगे सिलसिला पिंडा आले दे। ते इस तहत सुनोगे तुसी किस्सा रूप बसंत। ते इस प्रोग्राम दे वाचक हन बलजीत शर्मा जी अते निर्माता निर्देशक हन जनाब बलजीत शर्मा जी।
1: पिंडालियो ते शरालियो किवें आ दोस्तों, चढ़दी कला चो चढ़दी कला च ही रहोगे दोस्तों, क्योंकि समूह आकाशवाणी परिवार आप सारयां दी चढ़दी कला लई सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अगे ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे नतमस्तक होके हमेशा मंगदा रहिंदा है। दोस्तों, आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा ते मेरे नाल ममता अरोड़ा जी अज फिर कवि दौलत राम जी दी अमर रचना किस्सा रूप बसंत दा भाग दूजा लैके आप जी दी सेवा दे विच हाजिर हाँ। दोस्तों, पिछले भाग दी क्लोजिंग दे विच तुसी सुनिया कि चंद्र बदन रो रो के हालों बेहाल हो जांदी है। शाहूकार उस नूं अपने वस विच करन लई तरह तरह दियां चालां चलदा है। चंद्र बदन अपने आप नूं बेवस वेख के एक चाल चलदी है। ओह शाहूकार नूं आखदी है कि जे एक साल अंदर ओहदा पति ना मिलिया तां ओह उस नाल व्याह कर लवेगी। शाहूकार ढाढा खुश हुंदा है। दोस्तों, शुरुआत करन लगे आ भाग

0: ते मैं पिछले जन्म विच कर कीता जोड़ी विच तू पंग क्यों पा दित्ती। कहिंदे ने रो रो के वास्ते पांदी है।
1: भगवान दी करनी बसंत जदों समुंदर विच डिग्या तां ओ इक वड्डे आकार वाले मच्छ दी पिठ ते सवार सी। कई दिनां बाद ओ मिसर शहर दे किनारे पहुंच जांदा ए। घाट मिसर दा कुंवर नूं नजर आया, मारी मच्छ दे उपरों छाल यारो। घाट मिसर दा कुंवर नूं नजर आया, मारी मच्छ दे उपरों छाल यारो। उस जगह उत्ते पानी वड्डा आहा, होया गोतियां नाल निडाल यारो। होया गोतियां नाल निडाल यारो। गोते खांदे बसंत नूं शहर दा इक सोमदत्त नामी माली बचाउंदा ए ते ओनू अपने घर लै जांदा ए। मालण बसंत नूं वेख के डाढी खुश हुंदी ऐ। उन्हां दे घर अपनी कोई संतान नहीं सी। ओह कुंवर नूं पुत्रां तों वी वध प्यार करदे ने। उधर हाल सोने चंदर बदन दा जी, जिहड़ी कूंज वांगू कुरलावंदी ऐ। नाले भुख दे हाल जवाल होया, पानी पीवंदी ना अन्न खावंदी ऐ। दिन बीतदा है ना हौंकियां दे, विच दुखां दे रैण विहावंदी ऐ। कुछ दिनां बाद शाहूकार दा जहाज वी मिसर शहर दे घाट पहुंच जांदा ऐ। बसंत नूं जद इस दी खबर हुंदी है तां ओह अपनी मां नूं सारा भेत समझा दिंदा है। मालण फुल्लां दी टोकरी लै के चंद्र बदन नूं मिलदी है। गल्लां गल्लां विच ओह सूह कढ लैंदी है कि चंद्र बदन अपने सत ते पूरी तरां कायम है। मालण कुंवर नूं आके सारा हाल सुनाउंदी है। कुंवर मालण नूं कुछ होर गल्लां समझा के दुबारा चंद्र बदन कोल भेजदा ए। मालण चंद्र बदन नूं बसंत दी दसी हुई सारी स्कीम समझा आउंदी है। चंद्र बदन शाहूकार नूं आखदी है कि ओहदे वड्डियां दी रीत है कि व्याह तों पहला रूप बसंत दी कथा सुनाई जांदी है। राणी आखदी है शाहूकार ताई, कोई सुख जहान ते पवा लवां मैं। कोई रोज जवानी दा मौज मेला, कोई रोज जवानी दा मौज मेला। कोई खुशी ते ऐश उड़ा लवां मैं, मेरा चित एहो गल चावंदा ए। तौडे नाल शादी करवा लवां मैं, कथा रूप बसंत सुनवा मैनू। कुल दा धर्म तां तोड़ चढ़ा लवां मैं, दौलत राम राणी दिल विच आखे। दौलत राम राणी दिल विच आखे, तेरा जग तों तुखम उठा लवां मैं। शाहूकार रूप दे दरबार विच जांदा ए ते अनमोल तोहफे पेश करके अपने दिल दी गल बयान करदा ए। ओह रूप अगे अर्ज करदा ए कि ओनू अजिहा ज्योतिषी मिला देवे जेड़ा रूप बसंत दी कथा सुना सके। शाहूकार दी ए गल सुन के रूप दियां अखां विच अथरू भर आउंदे ने। सुनी रूप ने इतनी गल यारो, अखां विच पानी भरे आवंदा ए। बलदी अग उत्ते पिया

0: चंद्रपद राणी परमा शादी चंद्रपद राणी परमा शादी जरूर परम गई श्री बसंत युक्त उन्हें ब्याह करवा लिया बसंत ना सौदागर बेईमान हो गया आसम नमस्कार उन्हें धक्का दिता बसंत अपनी बल्लो
1: मालण कहानी नू अगे तोरदी दसदी है कि किवें शाहूकार बसंत नू अपना धर्म पुत्र बना के अपने नाल लै जांदा है ते उस दा व्याह कर दिंदा है ते फिर किवें ओह बसंत दी व्यौहता ते मोहित हो के उस नू अपनाउण लई बसंत नू समुंदर विच धक्का दे के सुट दिंदा है। मालण शाहूकार ते बसंत दी पत्नी वाले इशारा करके दसदी है कि ओ दोवें इसे दरबार विच ही बैठे ने। दोस्तो तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम पिंडाले ते तुसी ट्यून कीता होया है आकाशवाणी FM बठिंडा अपने दोस्त बलजीत शर्मा ते ममता अरोड़ा जी दे नाल। रूप ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੋਤਵਾਲ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਏ। ਮਾਲਣ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਮਦੱਤ ਨਾਮੀ ਮਾਲੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਏ।

0: ही चलता रहेगा। असी बड़ी एहतियात दे नाल इन्हां नूं माइक ते लैके आउने आ, फिर भी जे किते कुताही हुंदी है तां असी अपने तौर ते, मैं निजी तौर ते तुहाडे तों माफी चाहुंदा हां। साडे सारे साथी इह सिखण दे प्रक्रिया दे विच ने। धन्नवाद फोन करन लई जी।
1: जी ते लो जी, फिर खत वी प्रोग्राम दे विच शामिल करदे आ अगला
0: जी।
1: उस तों पहलां
0: असी कुछ संदेश सुन लईए जी।
1: जी
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1-4-555 ते कॉल करो।
1: जी समा 6:06 हो चुके है, प्रोग्राम श्रोता मन चल रहा है, खातू नू प्रोग्राम दे विच शामिल करांगे।
2: जी
1: जग्गा सिंह रामा मंडी तो इन्हां दे पोतरे तनवीर ते गुरवीर ते जसनूर अगली वार्ता सानू छेती तो छेती सुनन नू मिली।
2: वाह, इसे तरह लगता है जदों कोई चीज चंगी होवे, मनोरंजक होवे, इंटरेस्टिंग होवे।
1: जी बिल्कुल, अग्गे कहंदे इक बेनती हो रहा है कि जो आप जी ने समय दी तब्दीली कीती है ओह सानू हौली हौली कहंदे याद हो जावेगी।
2: हां जी,
1: अजे तक तां सानू पुराने प्रोग्रामां दे भुलेखे ही पैंदे ने
2: जी,
1: पर तब्दीली वी कहंदे इक समय दी लोड़ हुंदी है जो समय समय ते करनी पैंदी है।
2: जी
1: अगे लिखते ने कहते आप जी जिन्हें भी किस्से पेश करते हो उन्होंने बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि असी पुराने स्रोते हाँ 60-70 साल पहला इन्होंने किस्सा बड़े शौक न पढ़ते सी ते दिल भी बड़ा लगता सी सानू उही पुराना समा कहते याद आ जाता है जो अस किस्से सुनते हैं।
2: धन्यवाद।
1: जिन्हें भी बंदे कहते मेरे को रेडियो ठीक करवा आते हैं तो वह सारे ही एफ एम के गुणगान करते हैं। लो जी फिर इन्होंने प्यार मोहब्बत जी है जताई है जी, सांझी की है।
2: धन्यवाद जी, धन्यवाद सानू खत लिखण दे लई।
1: जी बिल्कुल, ते अगला खत भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बलजिंदर सिंह पिंड किली निहाल सिंह वाला तो इन्हों के दोस्त सुखदीप कुलदीप
2: जी,
1: इन्हों के कहते पापा जी स्वर्ग स्वर्गवासी सरदार डोगर सिंह
2: जी, इन्हां सब दा स्वागत है।
1: प्यार भरी सत श्री अकाल, कहते जी तुहाड़े सारे प्रोग्राम वधिया चल रहे ने पर तुहाडे अगे बेनती है कि तुसी मेरा पैगाम 5 जुलाई नू नहीं पढ़िया, ना ही तुसी 12 तरीक नू शामिल किया। मैं अपने पापा जी बारे लिखिया सी शेयर 21/6/2026 नू जो कि गुजर गए सी, ते मेरा पैगाम शामिल जरूर करो, कोई गलती होवे ता माफ करो।
2: शायद इन्हां दा पैगाम सुनिया है ते ए गल भी ओहदे च इन्हां जिहड़ी

0: इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया है।
1: इस मौके बोलदिया केंद्रीय रेलवे ते सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूबे दे विकास लई केंद्र सरकार दी वचनबद्धता दोहराई।
2: पंजाब में अपार संभावना है साथियों, लुधियाना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, जालंधर खेल उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है, मोहाली टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का बड़ा हब बन सकता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंजाब के हर नागरिक तक अच्छी रेल सुविधाएं पहुँचाने के लिए और आप सबका जीवन आसान बनाने के लिए कमिटेड है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे

0: नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है तुसी सारे खुश अते तंदुरुस्त होवोंगे। मैं अमन रुपाल,
1: ते मैं रमनीत मान।
0: प्रोग्राम युवानी विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदे हाँ। श्रोतियो, हर दिन सानू कुछ नवा सीखण ते समाज प्रति अपनी जिम्मेवारी नू समझाउण दा मौका दिंदा है। अज दे प्रोग्राम विच वी असी कुछ खास दिनां ते खास विशेआं बारे चर्चा करांगे। अज दे खास दिन दी गल करिए तां अज वर्ल्ड इमोजी डे है। इमोजी साडे मोबाइल विच छोटे छोटे चिन्ह हुंदे ने जो साडियां भावनावां नूं प्रकट करदे ने।
1: जी श्रोतियो, अज एक होर खास दिन जिस नूं विश्व अंतरराष्ट्री न्याय दिवस वजों मनाया जाता है। इस दिन उपर आपां एडवोकेट बिंदर कौर बराड़ जी नाल गलबात करके तुहाडे नाल जानकारी सांझी करांगे। ते श्रोतियो, इस दे नाल ही साडा एक होर विशा इस मौसम विच विआहां ते समागमां विच किद्दां दा पहरावा चाहुंना है, उस बारे आपां अगे गलबात करांगे। ते हुण सुणदे हां इक गीत।

0: जी श्रोतियो, अज असीं गल करांगे विश्व अंतरराष्ट्री न्याय दिवस की। यह दिवस हर साल 17 जुलाई नूं मनाया जाता है। इस दिन का जिहड़ा खास मकसद है वह दुनिया भर में न्याय, मनुखी अधिकारां की रक्षा ते कानून दे राज की महत्ता बारे लोगों नूं जागरूक करना है। विश्व अंतरराष्ट्री न्याय दिवस सानू यह संदेश दिंदा है कि शांतिपूर्ण ते न्यायपूर्ण समाज की नींह निरपक्ष न्याय ते मनुखी अधिकारां दे सत्कार ते टिकी हुंदी है। अज दे इस खास दिन बारे होर ज़्यादा जानकारी हासिल करन लई असी फोन ते मुलाकात रिकॉर्ड कीती है एडवोकेट बिंदर कौर बराड़ जी नाल। आओ सुनदे हां एक गलबात। श्रोतियो, अज दे प्रोग्राम विच मेरे नाल ने एडवोकेट बिंदर कौर बराड़ जो कि सानू जानकारी देंगे अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस बारे। वकील साहब, प्रोग्राम योगवाणी विच असी तुहाडा स्वागत करदे हां।
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा।
0: वकील साहब, सब तो पहला ए दसो कि अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस की शुरुआत किवें हुई ते इहदा इतिहास की है।
1: हां जी, इंटरनेशनल जस्टिस डे हर साल 17 जुलाई 1998 नूं रोम स्टैचुएट की याद विच मनाया जांदा है। इस समझौते दे आधार ते एक क्रिमिनल इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हुई सी
0: जी।
1: इहदा इतिहास हैगा भी दूजे विश्व युद्ध तो बाद वार क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ते अग्रेशन जिहड़े सीगे ओह वध गए सी, तां दोषियां नूं सजा देण वास्ते इंटरनेशनल सिस्टम दी लोड़ पई सी, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
0: ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਮ ਸਟੈਚੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ?
1: ਰੋਮ ਸਟੈਚੂਸ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ 1998 ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
0: ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
1: ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜਸਟਿਸ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1455555 ते कॉल करो।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: आवाज दी दुनिया दे दोस्तों नमस्कार, तुहाडा दोस्त लवलीन सजदेवा प्रोग्राम श्याम सुहानी लेके तुहाडी सेवा विच हाजिर है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमां देखता है। मिला है हुसन तो हुसन की हिफाजत कर, मिला है हुसन तो हुसन की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। जी हां श्रोतियो, तुसी अजेहे काज करो कि जमाना तुहानू मुड़ मुड़ के वेखे, क्योंकि ये जिंदगी मानस रूप मिलिया है सानू, ये वार वार नहीं मिलेगा, इसकी कदर करो। श्रोतियो तुसी इस बारे की सोचते हो, अपने दिल दियां गल्लां मेरे नाल सांझियां कर सकते हो, जां फिर तुसी अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनना होवे तां हुणे डायल करो 0164-2240-331। तुहाडी फोन कॉल का इंतजार करता होया चला रहा तुहाडे लई ए गीत।

0: जी हाँ श्रोते, तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा अपने रेडियो दोस्त लवलीन सचदेवा दे नाल। वेखते हां किहड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो,
1: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
0: नमस्कार जनाब, अपना नाम ते ग्रां दसो।
1: मेरा नाम जी ज्ञान सिंह खालसा, पिंड त्यौना, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा जी।
0: ज्ञान सिंह खालसा जी, प्रोग्राम शाम सुहानी च आप जी दा स्वागत है।
1: हाँ जी,
0: की हाल चाल ने?
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਘਰ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਸੱਚੀ
0: ਚਲੋ ਮਾਲਕ
1: ਦੀ।
0: ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਗੀਤ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?
1: ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ।
0: ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: जी हाँ श्रोते, फोन की घंटी वज रही है, वेखते हैं कि श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो
3: भाई, सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल, नमस्कार। कौन जनाब बोल रहे ने, केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
3: मैं जगरूप सिंह बोल रहा हूँ, लोकली बठिंडा तो। जी
2: जगरूप सिंह जी, बठिंडा तो बोल रहे हो, की हाल चाल ने जनाब?
3: बहुत बढ़िया सर।
2: प्रोग्राम हाँ वाहिगुरु चढ़दी कला च रखे। की काम कार करते हो?
3: काम कार तो मैं कैंट दा मुलाजम हां सर।
2: अच्छा, कैंट दे विच काम करदे हो, हैं जी?
3: हां जी हां जी।
2: साडे प्रोग्राम किस वेले सुनदे रहने हो फिर?
3: प्रोग्राम दा मैं तकरीबन सारे सुनना सर।
2: अच्छा, किवें लगदे ने तुहानू साडे प्रोग्राम?
3: बहुत वधिया जी, सारे इक नंबर आ सारे, मस्त।
2: धन्नवाद जी, तुसी भी मस्त रहो ते सुनदे रहो आकाशवाणी बठिंडा। अपनी फरमाइश दसो।
3: गीत सुना दो जी, इक फकीरा कुछ करके नाम दा गीत सीगा,
2: मोहम्मद सदीक रणजीत कौर दी आवाज विच, है ना जी?
3: हाँ जी
2: जनाब, फोन करने लई शुक्रिया। पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक ही।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा हो रहा है 7:59:46। हुण तो थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे चंडीगढ़ अते जलंधर दौरे ते आधारित रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र राही रिले कीती जाएगी। थोड़ी देर लई इसदा साडे नाल इंतजार करो।
2: दिने चंडीगढ़ ते जलंधर दा दौरा कीता, उन्हां दे इस दौरे ते हुण सुणो इक विशेष रेडियो रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां दी चंडीगढ़ ते जलंधर दी आमद ने पूरे पंजाब विच उत्साह ते भावुकता दी इक नवीं लहर दौड़ा दित्ती है। पंजाबियां दे दिलां दी धड़कना तेज हो गईयां, क्योंकि यह फेरी सिर्फ एक रस्मी दौरा नहीं सगो पंजाब दी पवित्र धरती प्रति अथाह प्यार ते विकास दी एक नवीं सवेर दा प्रतीक सी। इस इतिहासिक दौरे दे दौरान करोड़ां रुपईयां दे विकास प्रोजेक्टां दी शुरुआत कीती गई। चंडीगढ़ विच आधुनिक सहूलतां ते जलंधर विच उद्योगिक ते खेड जगत नूं मजबूत करन लई वड्डे ऐलान होए। रैलियां विच उमड़िया जन सैलाब यह साबित करदा सी कि लोग देश दी तरक्की विच अपना योगदान पाउण लई पूरी तरह तैयार ने। यह फेरी सूबे दे सुनहरी भविख दी नींह रखेगी। पंजाब दे दौरे ते आए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सब तो पहला चंडीगढ़ विच आए, जिथे कई विकास प्रोजेक्टां दा उन्होंने उद्घाटन किया। पंजाब दे राजपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय रेलवे ते सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, लोकसभा सांसद ते मेंबर मुनीश तिवाड़ी भी इत्थे हाजिर सन। इस मौके ते माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां दा स्वागत करदियां केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री JP नड्डा।
4: ये मेरा सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, PGI परिवार की ओर से और इस शहर के सभी निवासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सभी आयामों में एक बहुत विकास की कहानी हम सबको पिछले 12 वर्षों में देखने को मिली है। एक लंबी छलांग इस देश में सभी आयामों में आपके नेतृत्व में देश ने देखा है। यही अगर हम बात कहें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने और आपके नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व कार्य हुए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि आपकी सोच थी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आज 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज एक तरीके से 140 करोड़ की जनता को प्रथम कांटेक्ट पॉइंट पर उनकी सेवा करने के लिए तैयार और तत्पर बैठी है। इस तरीके का कार्य हो रहा है। इसी के साथ साथ सेकेंडरी हेल्थ केयर को लिंक करना, सेकेंडरी हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना और सेकेंडरी हेल्थ केयर के साथ साथ टर्शरी हेल्थ केयर पर जोर देना, यह आपके नेतृत्व में पिछले 12 सालों में हमने देखा है और एक लंबी छलांग हमने इसमें लगाई है। यह भी मैं बताना चाहता हूं, आपके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM जय, यह आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बन गया है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, यह भी दुनिया का एक सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन रहा है। उसी तरीके से अगर देखें तो PM लगभग 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और अब आपका कार्ड के रूप में उसी कार्ड पर डिजिटल दृष्टि से आपका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इस तरीके की कल्पना को अब आगे बढ़ा रहे हैं। जो विकास का कार्य आपके नेतृत्व में चल रहा है वो भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और वो पूरा होगा। ये लक्ष्य मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका यहाँ पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।
5: बहुत बहुत आभार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से संबंधित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का

0: उद्घाटन और शिलान्यास होना है। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की कृपा करें।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने अपने संबोधन च सब तो पहला चंडीगढ़ की साफ सफाई ते उहदी खूबसूरती की तारीफ करदिआं कहा,
2: चंडीगढ़ जाना जाता है व्यवस्थित विकास के लिए, चंडीगढ़ की पहचान है बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए, चंडीगढ़ की पहचान है चिकित्सा की बेहतर सुविधाओं के संबंध में, और इस सबके साथ साथ चंडीगढ़ की पहचान है मां चंडी का आशीर्वाद, और इसलिए चंडीगढ़ का विकास हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। आपको ध्यान होगा, डेढ़ साल पहले देश ने न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार किया। हम दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। भारतीय न्याय संहिता यानी दंड आधारित कानूनों की जगह न्याय आधारित कानूनी व्यवस्था, और तब भारतीय न्याय संहिता लागू करने की शुरुआत चंडीगढ़ से ही हुई थी। साथियों, बीते वर्षों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल गवर्नेंस, चंडीगढ़ को हाईटेक बनाने के लिए ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है। 2500 करोड़ से ज्यादा रुपये इस मिशन में खर्च हुए हैं। आज भी यहां हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास के कई काम शुरू हो रहे हैं। मैं इनके लिए सभी चंडीगढ़ वासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है। यहां एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर, एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों को इलाज के और बेहतर सुविधा देंगे।
1: मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश विच स्वच्छता दे इनकलाब दा जिक्र किया।
2: साथियों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इसमें स्वच्छता की कितनी बड़ी भूमिका है, और जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है, और मुझे खुशी है कि स्वच्छता को आज के इस कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। आज यहां स्वच्छता से स्वागत इस पहल के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया, और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में सारे लीडर लोग भी और जनता जनार्दन भी सफाई के काम में लगी थी। देश के अंदर एक खुशी का माहौल था इस सारी चीजों को देख करके।
1: सेहत के खेतर विच चंडीगढ़ के प्रशासन ने किस तरह दिया मल्ला मारिया ने, इसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने खास तौर पर जिक्र किया।
2: हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की

0: ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे, हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी और कम कीमत में मिलेगी। पिछले 12 वर्षों की देश की सफलता इसी संकल्प का परिणाम है। बीते वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नए एम्स काम कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ी है। यहां चंडीगढ़ में भी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बना है, यहां से थोड़ा दूरी पर। 2022 में मुझे इसके लोकार्पण का अवसर मिला था। आज हॉस्पिटल हजारों मरीजों की सेवा कर रहा है। साथियों, गांव गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हर स्तर पर हेल्थ सिस्टम मजबूत हो, इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट जैसी सुविधाओं का नेटवर्क तैयार हुआ है। आज शहरी और ग्रामीण इलाकों से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक देश में करीब 2.25 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी काम कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने कहा कि उन्हां दी सरकार देश नूं टीबी मुक्त बनाउण दे लई वचनबद्ध है। इस खेतर विच कीतियां गईयां प्राप्तियां ते उद्यमां दा भी उन्हां जिक्र कीता।
0: साथियों, हमने देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया है। इसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। जन भागीदारी के जरिए जन जन को जागरूक किया जा रहा है। समय से टीबी की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसी का परिणाम है आज देश में टीबी का ट्रीटमेंट कवरेज 90% से ज्यादा हो गया है। पिछले साल आई WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 10 वर्षों के भीतर भीतर टीबी संक्रमण भी 21% कम हुआ है। इन प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब को हो रहा है। इसका लाभ हमारे मिडिल क्लास को हो रहा है और ज्यादा लाभ हमारी माताओं बहनों को हो रहा है। और अब तो चंडीगढ़ PGI में भी MBBS कॉलेज को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही यहां भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इससे देश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। देश को बड़ी संख्या में बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे। साथियों, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यहां के शिक्षक और यहां के युवा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का रोडमैप होता है। इससे पहली बार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को होलिस्टिक अप्रोच के साथ विकसित किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए हैं। आईटी

0: कुट्टी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ। इससे एयरपोर्ट रोड पर दबाव कम होगा, मोहाली और खरड़ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से PR7 स्पेस पर इसकी आधारशिला भी रखी गई है। ऐसे सभी विकास कार्यों से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। हमारे चंडीगढ़ में ईज ऑफ लिविंग और बेहतर होगी। साथियों, रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस बढ़ाते हुए आज जालंधर में रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण होने वाला है। इसका लाभ पंजाब के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को होगा।
1: आज भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला संसार का 5वां मुल्क बनया। इस माण मत्ते पल नूं माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने देशवासियों दे नाल इंज सांझा कीता।
0: साथ ही आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं इसके लिए भी आप सभी को और देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर, फ्यूचर के ट्रांसपोर्टेशन पर और फ्यूचर की हेल्थ सर्विसेज के पर इसी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमें ऐसे फैसले लेने हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं जो समय के साथ और मजबूत हो जाएं। बीजेपी एनडीए सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इन नई परियोजनाओं के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जलंधर दी रंगली धरती ने आज एक नवा इतिहास सिरजिया जदों देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंजाबियों दे अथाह प्यार ते अपनात दे निग विच जलंधर पहुंचे। सिर ते किसानी सत्कार दी प्रतीक हरी पग सजाई। माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दा ए दौरा सिर्फ सियासी नहीं सगो पंजाब दे विकास ते भावनावां नूं गलवकड़ी पाउण वाला एक यादगारी पल बन गया। इस भावुक ते उत्साह नाल भरे माहौल विच उन्होंने सूबे दी तकदीर बदलन लई 5,470 करोड़ रुपए दे विकास प्रोजेक्टां दी सौगात दित्ती। अमृत भारत स्टेशन योजना तहत 125 करोड़ रुपए की लागत नाल नवियाए गए हाईटेक जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करदिया उन्होंने पंजाब दियां उम्मीदां नूं नवी रफ्तार दित्ती। इस दे नाल ही अमृतसर तों वाराणसी विचकार चलन वाली नवी श्री गुरु रविदास एक्सप्रेस नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया। ट्रेन के अंदर डेरा सचखंड बल्ला के मुखी संत निरंजन दास जी नाल प्रधानमंत्री होरां दी मुलाकात ने इस समागम नूं होर भी अध्यात्मक ते भावुक बना दिता। इस इतिहासिक पल दे गवाह बनन लई पंजाब दे राजपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, रेलवे राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ते कई प्रमुख शख्सियतां मंच ते मौजूद सन। जलंधर दी धरती तो गूंजी माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दी आवाज ने हर पंजाबी दे दिल नूं छोया। इस मौके ते केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव होरां ने अपने संबोधन विच कहा,
2: पंजाब की इस वीर भूमि को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे साथी मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सांसदगण, विधायकगण और मंच पर और मंच के साथ विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 राज्यों के 75 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 स्टेशनों का नव निर्माण किया जा रहा है। अब तक 261 स्टेशन बनकर तैयार हो गए और इस वर्ष के अंत तक

0: 350 स्टेशनों का नवनिर्माण संपूर्ण किया जाएगा। साथियों, स्टेशन निर्माण में कई बातों का ध्यान रखा गया है। आने वाले दशकों में जब ज्यादा लोग रेलवे का इस्तेमाल करेंगे, तब रेलवे की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था आज से की गई है। इस बात का आज से ध्यान किया गया है। स्टेशन के दोनों तरफ शहर बढ़ गया है, तो स्टेशन में सेकेंड एंट्री भी रखी गई है। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक आंगन बनाया गया है, कॉन्कोर्स। रेलवे को मॉडर्नाइज करने में इन स्टेशन की बड़ी भूमिका रहेगी, और आने वाले समय में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे का आधुनिकीकरण हाथ में लिया है, उससे रेलवे का एक नया स्वरूप सबके सामने आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, और अब 25 गुना बढ़ाकर 5,500 करोड़ रुपए स्टेशन बजट किया है पंजाब का। आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं। पंजाब में 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है, और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, रेलवे के नेटवर्क को विद्युतीकरण कर दिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी लुधियाना से लेके मुंबई में JNPT तक कंप्लीट, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को, महाराष्ट्र को जोड़ता है, और इस तरफ उत्तर प्रदेश को जोड़ता है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने अपने संबोधन का आगाज इस तरह कीता।
2: भारत माता की, आज पंजाब दी इस गुरुआ पीरादा दी धरती ते त्वाड़े सारिया दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो। पंजाबिया कीवे हो, जल्दी कलज हो। साथियों, कुछ समय पहले मैं यहाँ श्री गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने आया था, और आज हमारा जालंधर विकास के उत्सव का साक्षी बन रहा। आज सुबह मुझे जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने का अवसर मिला है। आज जींद से ही मुझे कुरुक्षेत्र में एक भव्य सिख म्यूजियम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये म्यूजियम हमारी गुरु परंपरा को, गुरुओं के ज्ञान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये गुरुओं की शिक्षाओं, उनके बलिदान और सेवा की परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाला प्रेरणा केंद्र बनेगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने रेल ते सड़क विकास प्रोजेक्टां दा वेरवा दिंदिया होया कहा,
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया। श्री गुरु रविदास जी ने समरसता और सामूहिक प्रयासों का जो संदेश दिया था, उसे आप सभी ने अपने व्यवहार में जीवंत किया। ये अभियान कर्तव्य भावना का भी उत्तम उदाहरण बन रहा है।
1: आजादी के संघर्ष ते गुरुद्वारा सुधार लहर विच वडमुला योगदान पाउण वाले सरदार तेजा सिंह समुंदरी नूं याद करदिआं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने कहा,
2: साथियों, आज के दिन मैं इस मंच से पंजाब के महान सपूत सरदार तेजा सिंह समुंदरी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका 100वां शहादत दिवस है। उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में सिख हितों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए। सरदार तेजा सिंह जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। आज से शुरू हो रहे उनके शहादत

0: करते जुड़े कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। साथियों, केंद्र की सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है। साथियों, जो भारतीय रेल है एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है, लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी ये आप अच्छे से जानते हैं।
1: भारत के मजबूत रेल नेटवर्क की शलाका करते हैं। मान्योग प्रधान।

0: सो
1: मेरा नाम गुरमुख सिंह जी, पिंड तलवंडी साबो,
0: गुरमुख
1: दमदमा साहब।
0: गुरमुख सिंह जी, प्रोग्राम पंज पाणी दे गीत विच आपदा स्वागत है, फरमाइश दसो
1: फरमैश तरसेम जसड़ दा सुना दो जी, रब दे रेडियो फिल्म चो जी।
0: जी। फोन करने लिए शुक्रिया जनाब, पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।

0: संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे।

0: नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने

0: दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए चितलकर और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार है सी रामचंद्र, फिल्म का नाम है आजाद।

कार्यक्रम का अगला गीत है हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है जाल।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगार हैं जानिसार अख्तर, संगीतकार हैं ओपी नैयर, फिल्म का नाम है छू मंतर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थीं बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

कानन देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की।

आनंद देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं, जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती।

तकरीबन 4 दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता के मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रहीं, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

इतने छोटे सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमिनोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थीं।

कानन देवी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रही। उनकी कुछ ऐसी ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्य। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

कानन देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थीं। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

कानन देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक और लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

किरण देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई ना कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

वृंदावन देवी के प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

नित्यानंद देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रही। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूँ विधि प्रवीण जैन। हर एक ख्वाब में बसती है तेरी नजर, मेरे हर ख्याल को छूती है तेरी नजर। दिल भी अजीब है मानता ही नहीं, कितनी बार समझाया फिर ढूंढे तेरी नजर। वो लफ्ज क्या कहें जो जुबा तक ना आए, सब राज बयां करती है तेरी नजर। मैं खो गई हूँ जैसे किसी गहरे समंदर में, जब से मुझ पर ठहरी है तेरी नजर।

वो चेहरा मानो प्रकृति की सबसे कोमल और रमणीय रचना हो, जहां हर रेखा में सौंदर्य की मधुर छाया बसी हुई है। कपोलों पर झलकती हल्की लाली संध्या की अंतिम आभा सी प्रतीत होती है, और उसकी गहरी भावपूर्ण आंखें किसी अनंत कथा का मौन आमंत्रण देती हुई मन को बांध लेती हैं। अधरों पर सजी मृदुल मुस्कान ऐसे खिलती है जैसे किसी नव प्रभात में कली पहली बार मुस्कुराई हो, जिसमें ना कोई आडंबर है ना बनावट, केवल निष्कलुष आकर्षण। उसके चेहरे का एक समग्र सौंदर्य किसी एक अंग में नहीं, बल्कि उस अद्भुत समन्वय में है, जहां प्रत्येक भाव और प्रत्येक आभा मिलकर एक ऐसी मोहक छवि रचते हैं जो केवल देखी नहीं बल्कि गहराई से अनुभूति की जाती है।

बंद पलकों से तुझे पढ़ लेना हुनर हो जैसे, बिन नजर के भी तेरा मिलना असर हो जैसे, तेरी आहट ही मेरे दिल में उतर जाती है, हुई खामोश दुआ रूह का सफर हो जैसे। यूं तो आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती, रूह से रूह का मिलना ही नजर हो जैसे।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। तेरी नजर से ही पहली वो मुलाकात हुई, दिल को खामोश दी एक मीठी सी बात हुई, एक पल ठहरी जो आंखें हैं तेरी आंखों पे, जिंदगी जैसे वहीं से नई शुरुआत हुई। हम तो वाकिफ भी ना थे इस अजब एहसास से, एक नजर क्या मिली रूह में बरसात हुई, तेरी पलकों की झपक में कोई जादू था, हर खुशी जैसे मेरे नाम की सौगात हुई। कभी किसी की नजर शरारत से मुस्कुराती है तो लगता है जैसे उसमें कोई राज छुपा हो, एक ऐसा राज जिसे कहना तो वो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, और कभी वही नजर इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें डूब जाने का मन करता है बिना ये सोचे कि लौट पाएंगे या नहीं।
1: नजरों से कह दो जी

तो शायद इतनी खूबसूरत होती नहीं। असल जादू तो बस इसी में है कि उनकी नजर चुपचाप उनके दिल को छू लेती है, बिना आवाज, बिना इजाजत, और फिर सब कुछ अपना सा महसूस होता है। अगर वही नजर खफा हो जाए तो जज्बात दम तोड़ देते हैं।

दिल की नजर से तेरा ही नूर दिखता है, हर एक ख्वाब में बस तेरा सुरूर दिखता है, तेरी खामोशी भी जैसे कोई गजल कहे, हर लफ्ज में छुपा हुआ एक गुरूर दिखता है। जब से तेरी चाहत ने छुआ है रूह को, हर दर्द में अब एक सुकून दिखता है, तेरी आंखों की गहराई में डूबकर देखा, वहीं कहीं मेरा मुकद्दर लिखता है। अब दिल की नजर को और कुछ भाता नहीं, हर तरफ बस तेरा ही हुजूर दिखता है।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: गालिन साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: खिची पे
1: अरे हो रे ना किसी के
0: मन में रहे तो याद करोगे समझे
1: समझे
0: अच्छा जी मैं हारी चलू माँ
1: देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना।